0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
1: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

अनुता पाखे वो छु कागु आसायात प्रेरित सुंगु अध्याय सुंगु पद के ध्यात गुदु वो मनुख पत्रुस व युहन्ना देगले दुहा वया वो ने तेने गु खना इमके भिक्षा फुन इमस हिनी वो मनुत या त देगले लिक्क तया बिल अले निथ वो आशा या थे भचा भचा जक देवा बिगु ख ठुकिन वो नसा हि मया फै मत्ती पेंगु यु पेंगु अध्याय के धाया तगुदु एशु लिस बिया दिल थथे चुना चोया तगुदु मनु त मरी जक्क मखु परमेश्वरिया मुटु पिहा वोगु छगु छगु बचन मई जीवु जीवने ने त छु नसा ने त गाक्क जेवा दैगु स्वयान परमेश्वरिया इच्छा योकुदु पत्रुस थो खु अले थगु अवस्थाय परमेश्वर पत्रुस्या त सगु विशेष प्रकाश बिल व पत्रुस्या त धाल कि थुम मनु ल्याके त तयार दु पत्रुस थुम लङ्गडा मनु या अपेक्षा या त सगु नुगु बडे या त्योङ्गु दु पत्रु सुङ्गु अध्यायु खुगु पत्के ध्याट गुदु अले पत्रुस धाल छित बित झिके लु व मधु एनसा झिके दुगु छित बि नास्रदिया येसुया ख्रिस्टिया नाम दना झाया दिस पत्रुस थगु मनुया त बित देवा मधु तद तक्क विदेशे सेवायाना जिगु छगु ख सिकागुदु मनु ते त जेवा बि मागु आवश्यकता मरु इमके जी पाखे जेवा स्वयान परमेश्वर या खगो अप मागुदु अले इम्स सशक्त याए त इमगु इम्स थ त ज्यायाना जेवा कमे या फै जी परमेश्वर या त मतिना याएगु वै गया शक्ति प्रकट याएगु अवसर माले गुनी ध्यान बिया सुना गुकी इमगु जीवन चमत्कारी हिउपा हेगु क्षमता दु यसो थ चिनिमो म चेला ते त जेवा मधेक छोया बिया दिल अले यसो ख्रिस्टिया सेवा या त जहाँ सिया बोले उइकल मनु ते त जेवा वो भौतिक वस्तु बिया चाहिला दिगु मखु वेकला बिया स्वया सशक्त याएगु योक्कु हे बाला स्वया त न केवले कने हान न ने पिट्याए तर न्या लागु सेना बिल धासा जीवन काछी हम हे नेगु याई प्रेरित सुङ्गु अध्यायु ढेगु पत्के धात गुदु ठुली धया वयागु जवल हात फुङ्गी यात थन अबले हे वयागु टुति व गौचा बल्लाना वल पत्रुस अपाङ्ग मनु यात छुन देवा मभ्यु व वया त यीशु ख्रिस्ट पाखे परमेश्वरया शक्तिया बारे मसिका बिल छ धाथे हे मनु त परमेश्वरिया खे उत्साही ड्रिमा छि आज चाहे पुगु व चमत्कारिया इम्स परमेश्वरिया महानता प्रकट जुगु खङ्के बिउ ठुकि परमेश्वरिया नीति उत्साह प्रतिक्रिया उत्पन्न याई गुगु इम्स देवा बिया गुब्लेन या फैमखु प्रेरित सुङ्गु अध्याय गुगु निखे झुगु पत्के धात गुदु मनु त फुक्कसिन वया त परमेश्वर यागु ना त धङ्गा न्याना न्यासी जुया सुन गु खन इम्स वया त देग्ले वनेगु बाला धागु धोख्या चुना फुना चुनी म फुङ्गी थोहे ख धका मसिल इपि फुक्क वया त थथे जु खना आज चाल यो पिनियन मेपि परमेश्वर झित मागु देवा मदे देमा धका इच्छा याई उकिन्जिस थथमा आर्थिक रूप गुहाली याए फै व झित शारीरिक रूप न ल्याके मास्ति हो तर झिगु जीवने नीति परमेश्वरिया योजना उकिया स्वयान योक्कु निहोने उनी वेकल झित झिस वया वेकया त विश्वास याएगु इच्छा याना दिल झिगु पाप्या नीति वेक क्रुसेसित अले सोनु लिपा परमेश्वर वेकया त यनमिपि छिम्स नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्तिकी लपुकेना दिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पाकमा फेट झिगु विश्वासके चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39।

0: 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।
1: टाइम चेक। यति बेला बिहानको 8 बज्यो।